0: d'autres qui pouvaient. On a différentes mesures de mettre en péril la sécurité des usagers ou encore le bon fonctionnement de l'appareil. Donc en fait, on vient faire des remplacements.
1: बहुत ही सुलझे हुए कलाकार थे, बहुत सुरीली आवाज़ों में आ जाते अपनी आवाज़ों का, यानी कि जादू चलाया, बहुत ही सुरीली आती आवाज़ें थी। हमें इस बात पर बिल्कुल भी
2: I'm not a friend.